0: सोना, सोना कोबो कह रहा
1: एहरी
2: पापा
0: धड़फड़ो कौन ताकत दिए पापा बिरों के लिए आधा कुनो मुझे मेज तेरे पर आया माम में नफे नहीं सामनों दा तेंगे धड़फड़ो
2: कह रहा नो दा मैं कह रहा उधर हेलानी को मेट्रो ने ने दत्ता कह रहा ना कि ते आंगे माती हार्डी वे में दिया आंगे माती दौड़ना दत्ता कि
1: ऐ ते दे मैं ये ने ती माँ पड़ी का चॉकलेटे कायरा बैठू नहीं मना गया कि गेंगोस एने के खारु क्या रे गेंगोस आगमती दोपाल ही हो पुनी
0: ऐन तो आधा रंगोल दत्ते के दो खूब ऐन भरम बेनु ऐने शुक्र अदा करूँगा
1: मिकलो पलावा ऐनी ऐना
0: खूबा

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআন হবে, লা তাআতা লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ, মানে আল্লাহং উরা দেবে এভেস কামেগা মিহাকা কিয়া মামবু মেনুবে হামাকাশওয়ারুং কিয়া মামবু বানি হেও কঙ্কামুগে।
1: ಆಡುವ ಸಮಂತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿಹಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾತು ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: सुना सुना कुबा कह रहा
1: एहरी पापा
0: दरफड़ो कौन ता कर दिए पापा बिरु केरिया आदा कुन मुले मेस तेलन पर है माम में नफे नहीं सामनो दा तेंगे दरफड़ो
1: कहरा नु दा मैं कहरा उडाले हलानी को बैठोने ने दत्ता कहरा ने की तांगे माती हाडवे मध्ये आंगे माती दण दत्ता
2: ए तेदे मी एने ती मा पोंडी का चॉकलेट कहरा बैठोने मना गया के गेंगोस एने गे खारु खरे गेंगोस आंगे माती दोपा ली उपुनी
0: एहन द आदर अंगळ दत्ते के दो खूब एन हर बेनो एने शुक्र अदा करनस
2: मिकळ पलावा एनी एना
0: कोबा

0: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರುಬಿತು
1: ರಾಜೆಗೆ ಉತುರ ದೇಖುನು
0: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
1: ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
0: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
1: ಎಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: मैं और गड़ी बार गड़ी 30 मिनट मैं दिव्य राज्य गाड़ और मैं तिबे फना हमें गणेश दिन मट्ट का तैयारों में द शो गवाह कर में द खादाना आधे और मैं वर्ल्ड कप के मैं शो कोरिया गणेश मट्ट का और मैं वक्त कल मैं हासो कल दने आद मैं तिबे फना गेवड़ अन्नवान मैं और मैं प्रोग्राम के तिबे फना मिहार में होती वर्ल्ड कप के मैं फहु मरहला तक ऐसा एक तो क्वार्टर फाइनल के फरतम में चुका तिबे फना और मैं गेस्ट है ने मैं प्रोग्राम में दूर को मैं मोरक्को आदि फ्रांस को ले मैच को कोलंग बंदागे और मैं तिबे फना हमें गिन मालूम तक मैं कमा बे तो गणेश दिन मट्ट का मसे कर में गंदने आद तिबे फना गेवड़ अन्नवान मैं और मैं तिबे फना हमें मैं गिन सा अट्टी में बैर वगे कुरिया गेंदा वर्ल्ड कप के वाहक हिसाब मिहार में होती अट्टी में मिहार बदलवेफा और बदलवेफा कानू अट्टी में हमें आदेफा एम में मम्मी हो रही अट्टी में वाहक ताल में धक्का दे मेरे में होती वरब मुहिम मैच क्वार्टर फाइनल के फुरतो मैच मेरे कुल देवन मैच मादन रे ग्यारह जहर तिमन हतर मैच मादन रे नो अनरे के दे जहर हाई जहर ते बेफुड़ा हमें गिडस्ताइन एम उम्मीद करंग अति बेफुड़ हम अरुण कॉमेंट्री तक मारकुरा बान कपा

0: c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, il y en a encore.
1: Hydration break. मेरे एम्बापे जहादी गोल आए कि वर्ल्ड कप के तारे हो गए इनके ने गोल आते काम को फोने मेसी एक आउट गोल मेसी वाले में हर काम को फोने हमारे खैरी का ते गोल फहातु का नवार गोल आए कि एम्बापे जिन्हें बात को नहीं हर उसके ही इनके ने गोल इस टुके पूरी का Mbappe ya di Persia dan Hunter Odi Robot Akbol Ek Sisto Yata Fatu Udilibin Mbappe ya